फेबा देखिसिसा जरा रक नांगै मानो नरक तांगै अबहाय उं बा खनाय माने औ तहु मारगे सिं जों दिनि नरक बाय बायबनो दि कक्ला सावैदो फेबा नरकनि ताखु ख नरक सहरजे एफएम अनि आबाय पान्दा खनावै मानियांगुइ दङ ते एप्स दिबो कामकाय क्लियर खनावै मानिया हिनि आवन बागै ताखु ख दिनि जों रचापुंनि फाइसिंगन थालायना तामियागे जों जायजगै दङ जिनि ट्रान्समिटर रक जों प्रपार खलायि नरकन खनारिनानि बागै हायखौ जराव जों रचापुंनि फाइसिंग थालायना खनादाव रचामुं नौ ज्योतनि बागै

आव जों साखामग्रायनि क खानामानि यागुलो ताबो खानालायानो तिनिनि तांबिति तिनिनि तांबिति ओ जों ड्रागन फ्रुट एबा ड्रागन बथाय कायनाते नायकानि ख्लायनानि रखनति किसा खानालायानो आव ड्रागन फ्रुट बाय जों सिनि लाइमानि आशक बाले बालक थायाखौ भियेटनाम थाइलेण्ड तै मालयसिया रगो ड्रागन फ्रुट गोबां ओंगोगो फिया ताबुक चिनि त्रिपुरा हास्तेव ब किसा मिसा ड्रागन फ्रुट खाइलाइमानि रग जों नुगो ड्रागन फ्रुट एबा ड्रागन बथाय चिनि हाथी रग ब आशक मानथगिया तै अब बेलाय न मरग हाइके जों अबन बेलाय खे कायनानि बागि एबा बाहायके कायै जों नायगानि रग खालायना नां आबरगनो किसा सिलाया नों ड्रागन फ्रुट कायसा बेलायनो कथक बथाय हिनि सिनि जागो तै अर भिटामिन ए भिटामिन सि भिटामिन डि तै करोना बेमार जरा रगो चिनि साखन बेमारनि कासुथानि बेलाय नांखगो गोबां कक एन्टिअक्सिडेन्ट दङ एन्टिएजिंनि ब सामुं खालायो कलेस्ट्रल न नर्माल तनिव केन्सारनि या काग्रिव तै प्रेसार नर्माल तनिव तै ड्रागन फ्रुट कायसा पुस्ति गोनां बथाय हिनिब सिनि जागो बबहाय थायरगो ड्रागन फ्रुट हामकक आरग्न किसा सिलायानो अबन कायना हिंके किसा चुकसर सर हाथाय नबार सातं नांथानि तै तै गोसा थाया थायरगो ड्रागन हामकगो केकटासनि कसल हिनजागो अबन अबन कायसा एबा ओ ड्रागन फ्रुट न कायसा सालकलक रमै बथायरिनाय बुफांनि बिसिन खबजागो बिसिनै जिनिसिमि बिसिनै जिबा जराते अब बथाय थायो कायसा बिघाव बेबागै कायनैरा पिलार कायमानो जालमानि पिलार बाय पिलार बोतां बाय बोतां चार एबा एट बाय एट फिटो मा आचुग्रिनाय पिलार कायसाव कायब्रै खालायि फांबोसा मा गायनाय कायसा बिघा थायो कायचारा फांबोसा नांनाय एबा नांगैमानो ड्रागन बुफांगो तिरकले आसोक नांथाया हाइफानो मुस्कि कसक तै रासायनिक सार रग रेखा हिनकेबा बेलायचाओ ड्रागन फ्रुट एप्रिल तालनि सेकेन्ड विकनि सिमि बुबार बारखे नभेम्बर ताल जरा बथाय थायना जेंगो एबा एप्रिल तालनि सिमि नभेम्बर ताल जरा बेबागै वाइदकनि सिमि वाइचार जरा बथाय मानै मानो साल ब्रै जिबानि उलो बथाय मुनो एबा खागै मानो ड्रागन कायमानि जरा रग ओंखा जुन तालनि सिमि अक्ट'बर ताल जरा फांबोसा कायमानि ताल जिनै ताल जिबानि यागुलुनो बथाय थायना जेंगो तिनिनि तांबितो जों खोनालायगासिक जरा ड्रागन फ्रुट गायनानै कक थाजा थायनै

जों दाबो खोनालायनाय दिनैनि ककथुम रक बुलानि अ ककथुम ओंखा महाराजा बीर विक्रम इउनिभार्सिटी आगरतला 2026-27 बिसिअ एडमिसननि बागै किसासोक साख्लायमुं रक एडमिसननि साबजेक्ट रक ओंखा एम ए इंग्लिश पलिटिकल साइन्स कक बरक एम एस सी मेथमेटिक्स मास्टर अफ लाइब्रेरि एंड इनफरमेशन साइन्स बैचलर अफ लाइब्रेरि एंड इनफरमेशन साइन्स एडमिशन बगे कईलै रिनानी पाइथक सालंका 3 आगस्ट 2026 एबा खना जरा शारिकनी

दामब्रै दाम्मा जरा कयलाइनि फि रक ओंखाहाय जेनेरेल केन्डिडेट्स रकनि बागै 100 एस टि एस सि पि डब्ल्यु डि केन्डिडेट्स रकनि बागै हिनके 50 कयलाइ हिनके समर्थ पर्टालनि बिसिंतै अनलाइनो कयलाइते फि जमा मारिनाय पर्टाल लिंक हिनके https://mbbuniversityadm.samarth.edu.in तेबो साजाखा कयलाइ रिनानि सोखां इउनिभार्सिटिनि अफिसियेल वेबसाइट नायनायनि बागै वेबसाइट ओंखा https://mbbuniversity.ac.in सोंमुं तंखा हिनके इमेल ते गोरोंनानि बागै साजाखा इमेल ओंखा admission.mbbu25@gmail.com tabukni okok thumka tps ni bakhaktei kaisa saklai mongo sajakha youth affairs and sports department tripura government ni achuk thai hinke youth organizer group c non gazetted advertisement onkhormani shal hinke 1st january 2025 22nd february 2026 shal mariwo simung amjokmung eba written exam ni result tps ni website official website o onkhorka हाइके ताबुक प्रोफेशनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स रोकनी इंटरव्यू पर्सनली टेस्ट अंगनाई बिस्कांग 15 सेप्टेम्बर 2026 नि सिमी शुक्रवार सिनानि बागै ऑफिशियल वेबसाइट नायनानि बागै साजाखा वेबसाइट इंखा tpsc.tripura.gov.in

एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने बखाक्री एडमिशन लांगना नि बागे बेबा कैंडिडेट्स रकन सैमान दिना नि बागे साखलाय जाखा TBJEE नि पुइला बेरम नि ऑनलाइन टी काउंसलिंग 24th 2026 सालमारियो अंगै पाइखा अरो चोंजा कैंडिडेट्स रक नि नॉमिनेशन नाहरनानि पाइथाक साल चेंखा 7th August 2026 तेई काउंसिलिंग नि जरा रकंखा सेकेंड फेज ऑफलाइन काउंसिलिंग अंगनाय 12th August 2026 तेई नॉमिनेशन याचाकनानि पाइथाक साल 18th August 2026 थर्ड फेज स्पॉट काउंसिलिंग ऑफलाइन ते अंगनाय 21st August 2026 तेई अबनि बागै नॉमिनेशन याचाकनानि पाइथाक साल अंका 27th August 2026 जरा रखनके फुंनि दामजि तामै सति थामजि निसिमि थाय हिंके कलेज अफ एग्रीकल्चर लेम्बुछोड़ा वेस्ट त्रिपुरा बेबा कैंडिडेट्स रकन कयजाखा डिपार्टमेंटनि अफिसियल नोटिफिकेशंस अंघरमानो नायनानि बागै ओमेन्स पॉलिटेक्निक हापानिया त्रिपुरा 2026-27 रंग विषय विशिथामनि डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स स्पॉट राउंड काउंसिलिंग विशिंगते एडमिशननि साख्लायमुं दिख्लाय जखा कोर्स रखंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फैशन टेक्नोलॉजी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी बेबागनो एस सी एस टी कैटेगरी किसासक आसुखाय बुकजा तंखहिनि साजाखा मुचुंनाय कैंडिडेट्स रङ 7th August दीपर दामथाम ताममानि बिसिङो दादाक्षिदाक इन्स्टिट्यूट गोरोंनानि बागै साजाखा गोरोंनानि बागै ककदुक नम्बर ओंखा 700-5253-558 तेकैसा तङ 700-51-890

हाईकोर्ट नि फैमिली कोर्ट ग्रुप दि आचुक थायो बरक लांगनानि बागै कयलाय सानजाखै तंगो मुचुंनाय तेई चुकजा केन्डिडेट सखनो 10 August 2026 सारिखनि दाम्बा ताम्मा जरा अनलाइन नि बिसिंतैखे कयलाय याफानानि बागै साजाखा आचुक थायिंखा ग्रुप दि पियन अर्डारलि गार्ड बेबागै बुक्सा तंगो कायब्रै इउआर कायथाम तेई एससि कायसा रोंमारि हिंगे गसिजाक बोर्ड इन्स्टिट्यूटनि माध्यमिक एबा 10th स्टैंडार्ड एबा आबोबाय बाक्सा पास खायजाखांनानै नांनाय उमर बिसि टीचारनि सिमि बिसि ब्रैजि एबा 18 निसिमि 40 इयार्स जरा ओंनानै नांनाय तै रायदानो रोगै खाथिजाक बसंरकनि बागै उमर हलिरिमुं दंनाय

0: मानमारी फिक्स्ड पे ताल थगे 12,000 खाय रिजाक्नाय एप्लिकेशन फी हिंके 300 चुकजा कैंडिडेट्स रोंनो पुइला सैमुं आमजोखमुं नहार जाक्नाय तेई पास खायनाय रोंनो एबा प्लस पास खायमानि यागुलो इंटरव्यूनि बिसिंतै सायजाक्नाय कयलै रिनानि बागै त्रिपुरा हाईकोर्टनि अफिसियल वेबसाइट ओंखा https://thc.nic.in आसेक जरा खनालायका सेबगो बरक थांमानिको
1: आव अजराव थांलायनासिन जिरि दिनिनि नावबर दैबानि बखा जिरि दिनिनि नावबर दैबारो जों साखालाय जाखा दिनि फुं जरा जे चांगमारि सुजाक माने आरो नुजागो 22.6°C ते तुंगमारि मियाफ्रु नुजाका 35°C ते दिनि तुंगमारि बाय चांगमारि दङानो सागा बखागो सिनि तुंगमारि दङानो 34°C ते खामाबो दङानो 22°C हिनै साजाकाते नगबारो तैहुकुनि मारि दङ राव चुकुसि चार ते खामाबो दङ बासि चार हाइकिते साखलाय जाखा गोरों गोरों थायो वाते वावै फानो मानो हिनैबो साखलाय जाखा हाइकि आसो जरा जों खोनालायगोन नगर दैबारनि कग्र
0: आव जों तिनिनि हायुंनि खरां पान्दा आसक्तैनो तिनिनि अपान्दानो संजाखा ते कमथिंगा आं सीमा
1: ए आं नरकनि बुखुक मामो
0: हाइफानो थांनायनि सिगां जों रोजाबमुं थाइसा खोनालायानो तिनिनि रोजाबमुंग खरांरिका ननि गोपाल देव बर्मा

0: मेहमान तुम।
1: अरे सर, आप गए नहीं? आप तो 5 मिनट में जाने वाले थे। ये क्या बना रहे हैं आप?
2: ये मेढक, ये बतख और ये केला।
1: मेढक

0: बच्चों बच्चों बच्चों, कैसी है पेंटिंग? देखिए देखो,
1: अति सुंदर सर,
2: फर्स्ट प्राइज सर।

मीना बुबाग्रा बै बुबाग्रा जंनि मुंग थानसान नुगजागु नायदे बसायने मुंग आसुंफा बिहिंने मुंग आसुंमा ताले मुंग तो थानसान कायसेगे फाउंखा कायसेगे माउंखा आसेजिको आपुन सिमिनो हिसांनि मुंग थानसा आतिबसं नुगै फायकाता जों राजमाला रगै नायखै इतिहास रगै नायखै ओ आसुंमा विद्यापति विद्यापति हिनिब सिनि जागै दङ आसुंमा से बिनि मुंग विद्यापति फियाबा बुबाग्रा आसुंफा बुमानि गोरों मान येवै बुफानि गोरों मानखा आसुंफानो हिलायदा बुफान गोरों मानखानो कंखा बुमा हिराबतिहाय आंगास गोनां लियाबो आसुंफा बेहे आसुंमालि फियाबा बग्रा जोखैनो आंगास गोनां एलम गोरों गोबांमा सामुं गोरोंखा बिनि फानताय परमायु बाय तिप्राव थानतिनि तागमुं वामुं तै सुबमुं आकरक बेलायखैनो फलक जाखा अरबो किसा किसा मानता मर गोबां फलै सिजाग्रै फियाबा आबरो किसा किसा जेमान माने आबन कमया फुवारजाखमा होनै फुवारजाखा बनि सारिमाखा बं जराउबा आसुंफा थिमायागल बसला खिचुंफा राजांखा बेहे गिसिरे जोंनि मुंखा खिचुंमा आरो आसुंफा सुंमारो खिचुंफा खिचुंमा माने हैजांनि मुंन समानजों नुगजाखाता खिचुंफांखा बुबाग्रा आसुंफानि बसासला संदारि बेहे खिचुंमांखा खरकजा ताकग्रों बदाल बिदाल ताब्लुब थाने सामुंबो सामुंगाफोर फोरोंखा सालसा बिनि बमर राव ब थाङै दंसा दंसत' खालायनो दंनांखा बिनि आमल लुकुरक राजाबाय मुंसातैफानो सातकजागमानि खोनाया माने सातकजागिया होननाय खोनाखाता वाइसेबां सातकजागिया होननाय सातकजागो होननाय वाइसेबां खोनाया म पाइखा ताबुक जे गौरबाय सभानि सभा नांलायमोन ताबुक दांगर फानि खतल जों ताबु सकपाइलायखा रमनि ताबु दांगर फानि कक सातानि सायमानो बुबाग्रा खिचुं फानि बसाजला दांगर फा कैलाशचंद्र सिंह बिनि राजमाला एबा त्रिपुरा इतिहास मुंगै बिजाब कांसाव बन दुंगुर फा होनै सैलांखा ब लुकुरक बाय हरिराय हिनिबो सिनिजागै दङ ब महाराज सेंथुं फानि कुसुंबरि लाइद्रब राजा कलाइता ब बिनि जरावन तिप्राहानि पूब गाला बखाग गुमति तिमानि आसाइमुख हासुक ग रियां दफानि लुकुरक दङै दङ अर रियां दफानि लुकुरग्न लुकुरग्न चबानो चब मेसिनै ब पूब गाला बखाग बिनिहा फलका हिनै मान ताले रियां दफानि लुकुरक जासमय पूब गाला गुमति तिमानि आसाइमुख माने गुमति तिमा जे हापुंनि तला हैते आसेगे जे हापुं हैते आसेकिया आरो ओता आरो ब्रक दंमानि ब्रंनो मेसिनै ब त्रिपुरानि हा फलक्का आकक अर ओ साजाका राजमाला हासे गामसाइनि लुकरंनि बिसिंग ककथेजा साजागै तंमानि दङ आबो तामो आबंखा सालकोबां सकां त्रिपुरानि दक्षिण गाला बोखांनि बुब्रा बुबाग्रा खरक जाबाय त्रिपुरा बुबाग्रा दांगाय किरिमा सिंसा सबा कसर कायसा नांलायखे होननाय दांगाय जोंहागे दाङै मा दाङै फाहिलायमानि आबोदा सायमालिया तबेय दाङै राजा जुद्ध नांलायखे ओ चभा कत नांलाय थानि न बुबाग्रा दांगाय आ बुबाग्रा न मेसिनि सिमि तंलिया बन बुब बुथारका ताइ बिनि हासेगै बायथानियागो चबैनाखा आपति नै सालायमानि खनाता सालायमानि दङ रेसेर खाग्रा मुंगुइ चबानि रेसा मुं थाइसा दङ ताबुबो दङ चबानि रेसा मुं चबानि रेसा मुंनि बिसिङ अबबो थाइसा रमदि खा खामकुंमानि रेसा मुं होनै मानु कायजेगमानि उलनि सालन कायजेंनाय बोरै खरकसा बसाय बेसुरु जे थुरुगै मालिया खरक तानालाय कबं तानालाय याकुं बसालागै ब थुलाय मालिया बसाय बेसुरु न बसायन जबा नांथानि याकरै दिहरा नांखा आफ्रुन तेनि उलनि सालन आबुनि बागिन खा खामजागै सोरगमा गावै काबै रेसाबै तंनायनि नांजाखा आबरै अबतेखा खामजागै रेसाबै काबमानि रेसा मुंन न रेसेर खाग्राव तंग रेसा मुंन रेसेर खाग्रा तंग आरो सामुं सारिनि सिमि सेंगै अक्रा साक्रा बेबांनि खापंनन उदिला खलायै दिसाव ओंखाय जों मबो खोनाव अ रेसेर खाग्रा रेसामुं अब तमुंन खा खा नोङै रेसाबखै याफांनिसिम बुसुक थाखायै आफ्रु नखा जेसेबानो सालतुङै दंथुन वातै थपजा थमनिफ्राय मा खालायो होनै आफ्रुनि बोरैसे बुरा रग सालायजा ताबो सालायो बोरैसे बुरान बिसिङ राजाक दंखाय बोरैसे बुरा आब्रक ताबो साबो रेसेर खाग्रा रेसामुं रेसाबखाय ताबुक ब जे नखानि वाति माकलायो होनै नखा गुरुमसाय फायो होनै अर सानाकलायो तिप्रा बुबागारा दुंगुर फान दाङै फा आपति उङै मान्ता बन दाङै मा दाङै

0: आब'नो सोंनानै उनावहाय थांबानि क्लासिकेल र' सोदो सोरों जाखिनि सोंनानै उनावहाय
1: हाफोन आं रोजा मोनो बेलाय हामजागौ आं खरां खाना दगे फन
0: आं
1: लुकरंनो कायसो कयनानो मोजाङो जे आंनि खरां खाना दगे फन आंनि आंथ' गानदक सुयोदो हेंका आंनि सिमानि ककथेर मोनसिमि फानो खोनादि आंनि खरांसो खाना दगे फानो
0: खरांथ' खाना दगे आंथ' होनि मानिया थाङै गांखाय निनि हाइके रोजाबनानैब आब' कायसा निनि अब' कायसा टेलेन्ट होनि मानो एलेम हिनि मानो हाइन' कक थाइबाय सिमिथ' रोजाबै माया निनि खरां खोनाथ' गैया होनैसि मायाबा
1: हाइफन' आं
0: आब' नों साक साक होनफानो बेबा लुकुरक्त'न' हामजागैनो थङ निनि खरां खोनाथ' गैया होनैसि माया आसुखे खरां खुब गोदै खरां गोजांबायखे नों दाबो सोंनो रोजाबै खोनारोगा आब' खिसानिखौ गैया बेलाय बेलायखे खोनाथ' खायसै
1: आंथ' माने रोजा मुनो हामजाखसुगो अमुक कायतर मानि सुवार होनि आं बयथ' खालामो दो हेंके नरक गोबां बर' रोजा मुनो हामजानाय दङ हेदिबाना हेंकाय आं जे अ रोजा मुं हामजानाय रं सानामो जंग' जे रोजा मुनो तेबो हामजांना नांगौ खायसि आसाम सानामो जंग'
0: हेंकाय नोंथ' चिनि अरनि चिनि आकाशवाणीनि खरगसा आर्टिस्ट निनि ग्रेड दङ बि जों सायमानो लुगुरक बाक्सा सायमायाबा नों मा ओंखाय फैयाबा निनि अरनि नों अर अडिसन र' बबा हायखे र' फायखा बाहायखे सायमांखा जे रेडिअ' आकाशवाणीआव रोजाबनानै गायसा सेब मानो अडिसन मानो बबा हायखे बाहायखे गोरोंखानो आकाशवाणीरा
1: अब आकाशवाणीआव सेबमा माने रिजन गायसा न' अब ओंखा सिनि दादो कोप्लाय कोप्लाय जमा दिया ब आर्टिस्ट बर'नि बर' तामु तांगाखाय बआनो साहाखा जे आइसा नों कासा अडिसननि बागै फायग्रा दि ओंखा आंबो सायमिया जे अ जागाव अडिसन लानानै गां फायगा आबो 2016 आपुर आंगर फायगा आकाशवाणी फायगा हेंगे अडिसन दांना लायखा ओंखाय अडिसन नायनो बसाव दाफोरनि लिस्ट फायोना नों जुदि अडिसन नों थिगि खांखेबा निनि बागै बुं फायनो होनो सावो गाबोनि कयेक मास गेन' आं बुं फायगा आं मार जा फायगा हेंगे आपुर बेलेगेन' दं थका खाथं माने बोखाव खाथं मानखा जे अ आंगो आकाशवाणीनि
0: চিনি
2: বেলাই
0: হামবাই কক হামবাই নরকব চিনি অরণি চিনি তিনি নারোয়াই বুকু গায়ে সাবাই দাদাক সিদা কক সানা মুচুংকা গায়ে বিনি খুব তৈর চাপন খানা মুচুংকায় কক দুখাই দিয়ে 0381-232-6253
1: আনি রচামুং তো রচাম নাই হেপা না আন আনি থাকো না রচামুং না কিসার
0: দা দা দা দা

गई बिनु खोक्ति रोक अस खनाय मान लिया के जे आ जरो खना खना जाक बर रोक चाक्रा बर रोक आंग माला के बर रोक सब खना रोहा लोग लोग मु तो मार गया ता गे मोबाइल रोक तों के रिकॉर्डिंग खाइन रा मन खामु ए आने थाको तो 1962 हाय के 60 रोंग सिमिन रो सब जाक 61 रोंग सिमिन गांग लाफुर आसासे ग संसार से पय बेले हमबाय अनथागुनि चामुरोनो खाउमुतु खायतन मानि बागे बेले केन

0: बेलाय बेलाय बेलाय खोनाथाव ओमफ्राय जराथ' तुरुक तुरुक थांदङ ओमफ्राय चिनि जरासो गोबां दंखायो हाइफा नन' टेम्प' कक सोंनानै दङ ओमफ्राय नन' दाबुक सोंना मुजुंग' दाबुकथ' गोबां मा बर' दक थ' दाबुकथ' डिजिटेलनि जरा जथन' खाब्रम लायजा गोबां कुक बर' दक न' जे पेरेन्ट सोनाय र' रिजाब मुंग' ओमफ्राय फिउचार नुगियाहाय रिजाब मुंग' न' आसो थामहिनायाबो एबा रिजाब मुंग' फिउचार दंलाग एबा रिजाबनानै मानाखायो ओमफ्राय गोबां पेरेन्टस दं माफासं दं बर'नो थामहिनि गजानाय
1: आं बर'नो माफानो गजाना मोसङो जे नरकनि बसा न' नों जे खायनो मोसङो आबो दं गियाना आबो जे कायदार एलेम रोमानि सुवा रोमानि आबो बायसिं नाय ओंखाय आमानि बागा आं सानाम सङो निनि बुसानि सागो निनि जेरानि सागो जे कायदर आबो हाखि एलेम रो जे खरां गाहाम बा सैनानि ककथाय गाहाम गाहाम बिन्दु फायो आबो हाय टेलेन्ट दं गाखै बनो नोङा टेलेन्ट ता माखायदि ताकासुदि नोंखौनो लगेसेर दे साबर सिखायो साबसा रोजामुंबाय सिनि मुंमाया साबसा रोजामुं बर' माया साबसा रोजामुंबाय फिउचार नगियाहैनाय गोबां मा बर' रक गोबां मा दाबुक आंनि थागनि कंन सासेबानो आंनि थागनो साबो सिनि गामुं सिंगा रेंगे हेंगे बकक ता सिया गान थागन ताबुक थै थांजाक संसार करनि सब बिनि गक सागाम
0: ए छाय दङ लुकुरक बिनि खरां खना ओइ दिनि
1: कय जना खरक
0: खरक सुख साखा आ जों सागबाय थांजों जोंनि
1: जिखान खनाय नमांका
0: जों से खना खनाय आंखाय तो खनाय माले ने हिन मानो अब ताबुक तो खब खना रजा खै आ गाय
1: आबो हेंगे नाय दि
0: आ जरा रगो हाय
1: चिनि त्रिप्रा सिमिया चिनि कबांग मा चिनि लाटा मंगेशकर सिनि बा बिनि नाय नाय दि बो संसारो जेसेकपन अबान चिनि बसानि बसा बसानि बसा फाइपानो सुख बरा राजि फाइपानो बन बुम ककथाय साजागै थांनाय न थांनाय इनके साबो साजे रजामङो फ्युस अनो गे हनिबो बिनि बसानि टेलेन्ट आरो तङो के बो आरो सपोर्ट खायनानि उंथु तै आरो न बिनि फ्युस आर नुंनानि उंथु हने आं साना मोजोंगो ता पेरेन्ट्स रङो
0: ओके कासुयावै
1: कासुयावै ने तेबो दुम साना सनांगो फानजेर नांगो बाहायदा
0: आबोन आबोन चिन बक्सा गबांगु बुरि बिसारङो के त तेबो आबोथ' नोंथ' दाबो खरकसा रोजाबनाय ओंगैसिन हायदोबा बाक्साथ' रोजाब मुंनो हामजाखफानो अ लामा रहननानै
1: रहना मुजुङे किसां बुरि बसारावनो

छाँदा कहम जतनन आकाशवाणी आगरतला ताबुक चेंगजगो सिनी तिनी सारिक जरानी ककबर गावै पान्दा पुइला नखना बायदि थुमनुक थुमनुकनि मुंगा थाबलानि सिन्दुर ते थुमनुक न सैनायखा नरेन्द्र देव बर्मा

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बिजली बिल से मुक्ति और बिजली की बचत के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आप भी बेहद सरल प्रक्रिया द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने पाएं। सौर की शक्ति, बिजली बिल से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए pmsuryaghar.gov.in पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। ओडिशा में महानदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार। केरल में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जनभागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
2: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत

0: संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: युवाओं की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो भारत की युवा शक्ति को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करे, उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करें। जम्मू कश्मीर और भारत के हर एक प्रोजेक्ट का आपको सह निर्माता बनना होगा। ये लक्ष्य असंभव नहीं है। भारत का भविष्य ये आपके हाथों में, आपकी सोच, आपका अनुशासन, आपका संकल्प ही विकसित भारत की नींव रखेगा।
0: वहीं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नशा मुक्त भारत का सपना केवल सक्रिय जन भागीदारी और युवाओं के नेतृत्व से ही साकार हो सकता है।
2: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माई भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
0: भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षों से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित की गई योजना निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी और जेल प्रशासन की जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि योजना से जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और अधिक बल मिलेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के लिए तैयार, रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में AI दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही।
4: दुनिया अब छठी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करने लगी है। जिस गति से तकनीक बदल रही है, जिस गति से हमारा व्यवसाय करने का तरीका बदल रहा है, मुझे लगता है कि यह सही समय है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान अपनी पूरी शिक्षण पद्धति, शिक्षा प्रदान करने के अपने पूरे तरीके को अपनाएं और उसमें बदलाव लाएं।
0: असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट।
5: स्वगणना की सुविधा 17 अगस्त से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण और मकान गणना से पहले 16 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, परिवार तथा व्यक्तिगत विवरण दर्ज करा सकते हैं और 15 दिन की अवधि के दौरान डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित गणनाकार 17 अगस्त से 15 सितंबर तक मकान सूचीकरण और मकान गणना करेंगे, जिसके दौरान प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में

0: मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
1: उड़ीसा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अभी भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुआं और ट्यूबवेल के दूषित होने से पीने का पानी की कमी बनी हुई है। फसलों को हुई भारी नुकसान से किसान बर्बाद हो गया है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों की तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षक क्षमताओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी ये टिप्पणी अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
2: ग्लासगो के प्रसिद्ध हाइड्रो अरीना में आज भव्य समापन समारोह के साथ 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो जाएगा। इस दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BEMZ, केमी वांस और सैंडी थॉम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम

0: का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।